चरित्र गाऊं प्रभु जी तमारा, अखंड सौभाग्य गणी अमारा, इच्छा उरे एज प्रभु जी मारी, स्मृति रहो अंतर मातमारी, मंगल मूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुखरूप,

श्री स्वामीनारायण भगवान जय। श्री हरि वड़ताल माँ संतों ने विवेक शिखवता कहो हरि भक्तों ने संतों ने એટલે હરિભક્તો તો આવી જ ગયા, હજુ કેટલો સુંદર વિવેક છે

महाराजनी जय। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। दिल्ली अक्षरधाम महोत्सवनी जय जय जय। हाथ जोड़ी ने अपने स्वामी श्री स्मृति साथे श्लोक नु गान करिए।